0: बॉलीवुड
1: दिल में जुनू है, जोश की जवा है, सांसों में मेरे जलती ये शमा है।
0: दन बजे लगी, दिनकर कमी, दी आशिक एफएम।